0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online और radio पर.
2: नया दिन, नई शाम और एक नई शुरुआत. आप सुन रहे हैं SBS हिंदी. मेरा नाम है नबील. आइए शो शुरू करते हैं. लेकिन शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो में सबसे पहले बात होगी ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर और आरबीआई के इंटरेस्ट रेट के फैसले से बढ़ते फाइनेंशियल प्रेशर पर, और इसका आप पर, आपके घर के बजट पर क्या असर पड़ सकता है ये भी समझेंगे. साथ ही उन फ्री सपोर्ट सर्विसेज के बारे में भी बात करेंगे जिनका आप सहारा ले सकते हैं. उसके बाद आएगी इंडिया रिपोर्ट, जिसमें हम लेकर आएंगे भारत की कुछ खास खबरें, राजनीति, सोसाइटी और इकोनॉमी से जुड़ी हुई. फिर एक रिपोर्ट जिसमें हम समझेंगे एजेंटिक एआई को, कैसे ये नई एआई टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देने तक सीमित नहीं है बल्कि पेमेंट्स, बुकिंग और रोजमर्रा के काम भी कर रही है, और इसके साथ कौन से जोखिम और चुनौतियां सामने आ रही हैं, इस पर एक रिपोर्ट. और अंत में विक्टोरिया पुलिस की एक पहल पर नजर डालेंगे, जहां सीएएलडी कम्युनिटीज को फोर्स में जोड़ने और मल्टी कल्चरल पॉलिसिंग को और मजबूत बनाने की कोशिश हो रही है. तो ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी एक एक करके, और शो के दौरान आज हम आपके लिए गाने भी प्ले करेंगे जिसका आपको अंत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें होंगी शो में, और आपके मैसेजेस भी हमारे पास आने चाहिए. 0439-799-767 पर आप अपना कोई भी मैसेज भेज सकते हैं अपने नाम के साथ. तो अपने मैसेज जरूर भेजिए, और शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुन लेते हैं आज का न्यूज फ्लैश. सोमवार 18 मई की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. फेडरल ट्रेजरर जिम चामर्स ने न्यूज पोल के उस नतीजे पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें ये सामने आया है कि लेबर का बजट 1993 के बाद से सबसे कम लोकप्रिय बजट रहा है. सर्वे के अनुसार 52% मतदाताओं का मानना है कि इस बजट से उनकी स्थिति और खराब होगी. ट्रेजरर ने आज ये भी घोषणा की है कि क्वींसलैंड के लोगों के लिए 50,000 घर उपलब्ध कराने की डील हुई है, जिनमें से 21,000 घर पहली बार घर खरीदने वालों के लिए आरक्षित होंगे. जिम चामर्स ने कहा है कि वो समझते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स डिस्काउंट और नेगेटिव गियरिंग में बदलाव को लेकर कुछ ऑस्ट्रेलियाई लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन उनका काम कठिन फैसले लेना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना घर मिल सके. बजट की लोकप्रियता कम होने के बावजूद न्यूज पोल में ये सामने आया है कि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी लिबरल नेता एंगस टेलर की तुलना में पसंदीदा प्रधानमंत्री के तौर पर आगे हैं. सर्वे के अनुसार एंथनी अल्बनीजी को 46% समर्थन मिला जबकि एंगस टेलर को 38% समर्थन. वहीं सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड के लिए किए गए रिजॉल्व पोल जो रविवार को प्रकाशित हुआ उसमें अलग नतीजे सामने आए हैं. इस सर्वे में एंगस टेलर को थोड़ी बढ़त मिली है और वो 33% समर्थन के साथ एंथनी अल्बनीजी से आगे रहे, जबकि 37% लोगों का कहना है कि उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं किया है. न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने घरेलू हिंसा पर सख्त कार्रवाई के दौरान 4 दिनों में लगभग 1,000 लोगों को गिरफ्तार किया है और 94 हथियार जब्त किए हैं. बुधवार से शनिवार यानी 16 मई तक चले ऑपरेशन एमरोक के दौरान 2,063 चार्जेस लगाए गए, 299 अरेस्ट वारंट जारी किए गए और 391 घरेलू हिंसा सुरक्षा आदेशों के उल्लंघन दर्ज किए गए. गिरफ्तार किए गए लोगों में एक 28 वर्षीय फेयरफील्ड निवासी भी शामिल है जिस पर एक महिला को बार बार चाकू मारने का आरोप है, और एक 51 वर्षीय व्यक्ति भी जिस पर जानबूझकर गला दबाने का आरोप लगा है. न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने कहा है कि यह अभियान अपराधियों पर दबाव बढ़ाने के लिए चलाया गया था और चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति हिंसा, धमकी या कोअर्सिव कंट्रोल का उपयोग करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऑस्ट्रेलिया की

0: सबसे बड़ी रोबोटिक्स रिसर्च लैबोरेटरी ने एक नई टेक्नोलॉजी पेश की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोट्स को खुद निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। CSIRO जो नेशनल साइंस एजेंसी है, उसने ब्रिस्बेन में एक छोटा और एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर लॉन्च किया है जिसका नाम वेट्रा रखा गया है। ये टेक्नोलॉजी उन रोबोट्स के लिए बनाई गई है जो ऑटोनोमस काम करते हैं, जैसे माइन साइट्स, अंडर वाटर ऑपरेशंस और सोलार पैनल क्लीनिंग। ये रोबोट्स कुछ ही सेकंड में निर्णय ले सकेंगे और ये पूरी प्रोसेसिंग ऑस्ट्रेलियन सर्वर्स पर होगी। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया में AI डेटा सेंटर्स में बड़े निवेश किए हैं। साथ ही सेनेट ने इन डेटा सेंटर्स के प्रभाव को लेकर एक इंक्वायरी शुरू की है। न्यू साउथ वेल्स सरकार ने कहा है कि नो ग्राउंड एविक्शंस पर रोक लगाने वाले बड़े कानून सुधारों के एक साल बाद लाखों किराएदारों को ज्यादा स्थिरता और मानसिक शांति मिली है। राज्य सरकार ने ये बदलाव इसलिए किए थे ताकि हर साल हजारों किराएदारों को बिना किसी कारण के घर से निकाले जाने की समस्या को रोका जा सके। सिडनी में लगभग 2.3 मिलियन लोग किराए पर रहते हैं, जो शहर की आधी से ज्यादा आबादी है। स्टेट हाउसिंग मिनिस्टर रोज जैक्सन ने कहा है कि ये सुधार, जिनमें किराए में बढ़ोतरी पर सीमा और मकान मालिकों को भुगतान करने के फी फ्री तरीके शामिल हैं, अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, हालांकि व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात की पुष्टि नहीं की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और इसराइल ईरान पर सैन्य हमले करने की योजना बना रहे हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे जल्द ही पीस डील की ओर बढ़ना चाहिए, वरना ईरान में कुछ भी नहीं बचेगा। वहीं ईरान की मीडिया के अनुसार स्थानीय लोग संभावित संघर्ष को लेकर तैयारी कर रहे हैं। और अब खबर भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर स्वीडन पहुंचे, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान भारत और स्वीडन ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, तकनीक, रक्षा और कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और स्वीडन के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसे और विस्तार दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों और मानव केंद्रित विकास पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 2018 में स्वीडन गए थे, जब पहली बार इंडिया नॉर्डिक समिट आयोजित की गई थी। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और न्यूज फ्लैश के बाद अब बारी है इस शो के पहली रिपोर्ट की। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का दबाव अभी भी बना हुआ है। इस महीने रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा ब्याज दर बढ़ाने के फैसले से कई परिवारों पर आर्थिक बोझ भी और बढ़ गया है। ऐसे में हम उन मुफ्त और स्वतंत्र सहायता सेवाओं पर नजर डाल रहे हैं जो लोगों को आर्थिक तनाव से निपटने में मदद कर सकती हैं। आइए सुनते हैं वैशाली जैन की ये रिपोर्ट।
1: अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब तीसरे महीने में प्रवेश कर चुका है और इसका असर ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगातार दिखाई दे रहा है। खासकर इस महीने रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा ब्याज दर बढ़ाए जाने के बाद कई ऑस्ट्रेलियाई परिवारों के लिए यह आर्थिक दबाव अब दोहरा हो गया है। लोगों को एक ओर पेट्रोल पंप पर अधिक कीमतें चुकानी पड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर किराना, किराया, होम लोन और रोजमर्रा की जरूरी चीजों का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड फ्यूल इन फोकस के इस एपिसोड में हम उन मुफ्त और स्वतंत्र सेवाओं पर नजर डालेंगे जो लोगों को आर्थिक तनाव से निपटने में मदद कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली जैन और आइए सुनते हैं अब ये अंश। मेलबर्न निवासी इम्तियाज अहमद IT क्षेत्र में फुल टाइम नौकरी करते हैं, लेकिन परिवार का खर्च संभालने के लिए वे सप्ताहांत और शाम के समय टैक्सी और राइड शेयर वाहन भी चलाते हैं।
2: One job is not enough for their, you know, survival. My car unfortunately take diesel and where I used to spend around 100

0: $103 and $105. Now it's gone up to around $160, which doesn't really help me. So things are quite tough for everyone.
1: अहमद का कहना है कि ईंधन की बढ़ती कीमतें समस्या का केवल एक हिस्सा हैं। कम होते यात्री, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा बढ़ाया गया कमीशन और रोजमर्रा के बढ़ते खर्च ड्राइवरों के लिए गुजारा करना और मुश्किल बना रहे हैं।
0: The other day, I just went to the airport to pick up my ride. Been sitting there for nearly 4 hours. Didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning. Just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
1: अहमद अब नेशनल डेट हेल्पलाइन से संपर्क करने पर विचार कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया भर में उपलब्ध एक मुफ्त, स्वतंत्र और गोपनीय सेवा है। ये हेल्पलाइन आर्थिक तनाव का सामना कर रहे लोगों को वित्तीय सलाहकारों से जोड़ती है, जो उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हैं और उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा करते हैं। नेशनल डेट हेल्पलाइन की विकी स्टाफ कहती हैं कि अब कई लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा पेट्रोल और खाद्य सामग्री जैसी जरूरी चीजों पर खर्च कर रहे हैं, जिससे अन्य आवश्यक खर्चों के लिए कम पैसा बच रहा है।
2: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
1: Staff का कहना है कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें बैंक या ऋण देने वाली संस्था से आर्थिक कठिनाई सहायता यानी financial hardship arrangement मांगने का उन्हें अधिकार है.
2: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counsellors can talk about.
1: स्टाफ का कहना है कि सही जानकारी और व्यावहारिक विकल्प सुझाने के लिए वित्तीय सलाहकारों को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह समझना आवश्यक होता है।
2: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
1: National Debt Helpline से संपर्क करने के तीन तरीके हैं। लोग 1800-007-007 पर कॉल कर सकते हैं, ndh.org.au वेबसाइट पर जा सकते हैं या वेबसाइट पर उपलब्ध लाइव चैट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। जो लोग अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा बोलते हैं, उनके लिए नेशनल डेट हेल्पलाइन कॉल के दौरान दुभाषिया यानी इंटरप्रेटर सहायता की व्यवस्था भी कर सकती है। स्टाफ का कहना है कि मदद मांगने वालों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए व्यस्त समय में कॉल करने वालों को इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन उनकी सलाह है कि यदि पहली बार संपर्क ना हो पाए तो लोग बाद में दोबारा कोशिश करें या लाइव चैट जैसे दूसरे विकल्प का इस्तेमाल करें। लोगों को ये भी सलाह दी जा रही है कि वे सामुदायिक संगठनों के माध्यम से उपलब्ध अन्य मुफ्त सहायता सेवाओं की जानकारी लें। इनमें द सैल्वेशन आर्मी की मनी केयर सेवा, कुछ एंग्लिकेयर वित्तीय परामर्श सेवाएं, सामुदायिक कानूनी केंद्र, मॉब स्ट्रॉन्ग डेट हेल्प और फाइनेंशियल राइट्स लीगल सेंटर शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड फ्यूल इन फोकस के इस अंश को SBS न्यूज से साहिल मकर और SBS हिंदी से प्रशाली जैन ने प्रस्तुत किया।
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find

0: A job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी. मेरा नाम है नवील और एड ब्रेक के बाद वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आगे बढ़ेंगे और इंडिया रिपोर्ट सुनेंगे, लेकिन इंडिया रिपोर्ट से पहले एक छोटा सा सवाल. जिंदगी में जब कोई चीज पहली बार होती है या आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमेशा यादगार रह जाती है. ऐसे ही एक एक्सपीरियंस होता है जब पहली बार हम मूवी हॉल में थिएटर में जाके हमने कोई फिल्म देखी हो. और वो कई बार ऐसा होता है कि जब हम बचपन में होते हैं हमारे माँ बाप हमें ले जाते हैं, तो वो पहली फिल्म कौन सी थी जो आपने थिएटर हॉल में जाकर देखी थी? उस फिल्म का नाम बताइए और हमारे साथ शेयर करिए. 04397997667 हमारा नंबर है. अपना नाम भी जरूर लिखिएगा, नाम लिखना ना भूलिएगा. और हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और देखते हैं किसने कहां से कौन सी मूवी पहली बार हॉल में जाके देखी. 04397997667. आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं इस वक्त इंडिया रिपोर्ट.
3: स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार. पेश है भारत के समाचार. नीदरलैंड्स में कई अहम समझौते करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को स्वीडन पहुंचे. यहां वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेनसन से बैठक के दौरान व्यापार, तकनीक, रक्षा और ग्रीन एनर्जी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इससे पहले नीदरलैंड्स में 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल ताम्र पट्टिकाओं को भारत लाने पर समझौता हुआ. ये करीब 1000 साल पुराने तमिल दस्तावेज हैं, जिनमें चोल साम्राज्य से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी है. इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच भी सेमीकंडक्टर और चिप तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है. शनिवार को आयोजित एक CEO राउंड टेबल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपियन निवेशकों को भारत में निवेश और कारोबार करने का न्योता दिया.
4: हम कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर आप पूरे विश्व के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. इसी तरह सर्विसेज सेक्टर में भी भारत अपने टैलेंट के बल पर एफिशिएंसी और इनोवेशन का इंजन बन गया है. विश्व की सभी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने भारत में अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोली है. हम आप सभी को भी भारत में डिजाइन एंड इनोवेट करने के लिए आमंत्रित करते हैं, और इसके लिए आज से बेहतर समय कोई नहीं हो सकता.
3: केंद्र सरकार ने अंडर ग्रेजुएट नेशनल एग्जामिनेशन एंड एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट UG परीक्षा में व्यापक स्तर पर पेपर लीक मामले का संज्ञान लेते हुए इसे रद्द करने का फैसला किया है. अब यह परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी. MBBS दाखिले के लिए किए जाने वाली इस परीक्षा के एग्जाम पेपर लीक मामले में CBI अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. ताजा गिरफ्तारियों में पुणे के केमिस्ट्री प्रोफेसर PV कुलकर्णी और सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मानधरे का नाम शामिल है. प्रोफेसर कुलकर्णी को लीक मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है. वे केमिस्ट्री के डोमेन एक्सपर्ट के तौर पर कई सालों तक नीट पेपर तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा भी रहे हैं. जबकि CBI के मुताबिक बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मानधरे को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट परीक्षा में एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने 3 मई के पेपर से पहले अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आरोपी मनीषा वाघमारे की मदद से कई स्टूडेंट्स को पेपर लीक किया था. छापेमारी की कार्यवाही में जुटाए गए सबूतों की CBI फोरेंसिक और डिजिटल जांच कर रही है. इस पेपर लीक मामले में अब तक 4 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं. बहुत से छात्र संगठनों ने कई राज्यों में NTA और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किए. शिक्षा मंत्री ने

0: सीबीआई जांच पर विश्वास जताते हुए कहा कि अगले साल से नीट परीक्षा ऑनलाइन होगी।
1: सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधा कृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से हो।
0: लेकिन लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
2: यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल होने के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग कर नई संस्था बनाने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में एक ऐसी समिति का गठन करने की मांग की गई है जिसकी निगरानी अदालत करे। इस समिति का काम राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करने की प्रक्रिया की देखरेख करना और यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षाओं का कोई पेपर लीक न हो। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर पूछे गए सवाल पर केंद्र सरकार ने कहा है कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति में मुख्य न्यायाधीश का होना जरूरी नहीं है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र ने कहा कि किसी न्यायाधीश को चयन समिति में शामिल करना संसद का फैसला हो सकता है, लेकिन इसे संवैधानिक मजबूरी नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मौजूदा कानून जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री वाली समिति करती है के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर सरकार को ही फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में नेता विपक्ष को रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की जरूरत क्या है। सीबीआई निदेशक की सिलेक्शन कमेटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं रखा गया है। आपको बता दें कि सन 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में कहा था कि जब तक संसद नया कानून नहीं बनाती तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की समिति करेगी, लेकिन इस पर सुनवाई से एक दिन पहले ही केंद्र सरकार नया कानून ले आई जिसमें मुख्य न्यायाधीश को समिति से बाहर कर दिया गया। इसी कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। सुपर अल नीनो के प्रभावी होने की संभावना की वजह से भारत में इस साल सामान्य से काफी कम बारिश, गर्मी होने की आशंका है। अमेरिकी मौसम एजेंसी नोवा यानी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार अल नीनो मई से जुलाई के दौरान प्रभावी हो सकता है। नोवा का कहना है कि प्रशांत महासागर का तापमान इस बार मई में सामान्य से आधा डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इस कारण गर्मी की स्थिति इस बार पूरे मॉनसून सीजन के दौरान बनी रह सकती है। पिछले महीने यह संभावना 61% थी जो अब बढ़कर 82% हो गई है। भारतीय मौसम विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्र के अनुसार इसका सीधा असर मॉनसून की बारिश पर पड़ेगा जिससे देश में सूखे का खतरा और बढ़ जाएगा। इस स्थिति की सर्दियों यानी दिसंबर से फरवरी 2027 तक जारी रहने की 96% आशंका है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति बनने का खतरा सबसे ज्यादा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को अगस्त सितंबर के दौरान सबसे संवेदनशील राज्यों में माना जा रहा है। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।

0: advertising.
1: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
2: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: Tu verano arranca ya con las ofertas de Memorial Day en The Home Depot. Este es el momento para que tus carnitas asadas entren en calor. Con el asador de gas de 4 quemadores Next Grill, ahora en compra especial por solo $199. Además, llévate el set de comedor para exterior 7 piezas West Grove de Hampton Bay por solo $499. Este Memorial Day deja tu patio listo con precios bajos garantizados en The Home Depot. Hasta agotar existencias, aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
6: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है. और एक सवाल जो हमने आज अपने शो में पूछा था वो ये था कि आपने पहली फिल्म कौन सी है जो मूवी हॉल में जाके देखी थी. और निर्मित जी लिखते हैं क्लेटन मेलबर्न से कि मैं अपने फैमिली के साथ सबसे पहली बार छेलो दिवस, अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया है, कि जो एक गुजराती मूवी है वो देखने गया था. और आपकी कौन सी पहली फिल्म थी जो आपने मूवी हॉल में देखी? 04397997 पर हमें मैसेज करके बताइए और अपना नाम भी जरूर लिखिएगा. और ये पहली बार हॉल में मूवी देखना बड़ा ही यादगार एक्सपीरियंस रहता है जो शायद हम में से कोई भी कभी नहीं भूलता. तो 04397997997 हमारा नंबर है. और SBS हिंदी पर इस वक्त एक गाना, फिर वापस आकर कुछ रिपोर्ट्स सुनेंगे.

0: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मेरा नाम है नबील और आगे बढ़ते हैं इस गाने के बाद। अब वक्त हो गया है एक रिपोर्ट का। ये रिपोर्ट जुड़ी है AI से। पहले AI सिर्फ सवालों के जवाब देता था, पर अब वो आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट भी कर सकता है, प्लेन टिकट्स बुक कर सकता है और अब इंसानों की नौकरियां भी ले रहा है। एजेंटिक AI जो ये सब करने में सक्षम है, वो क्या चीज़ है और बिना सख्त नियमों के बेहद तेजी से विकसित भी ये हो रहा है, क्या है वो और कैसे उससे सचेत रह सकते हैं, इसी पर ये रिपोर्ट ला रही हैं स्वाति शर्मा।
1: काम पर AI आपकी जगह ले ले और घर पर आपकी निजी जानकारी इंटरनेट पर डाल दे, कुछ साल पहले तक ये साइंस फिक्शन लगता था, लेकिन एजेंटिक AI नाम की एक नई तकनीक आज यही कर रही है। नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूँ स्वाति शर्मा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एजेंटिक AI है क्या। आमतौर पर ChatGPT जैसे AI चैटबॉट आपके सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन एजेंटिक AI इससे एक कदम आगे है। इसे आजादी दी जाती है कि वो आपके कंप्यूटर पर खुद काम करे, ब्राउजर खोले, टिकट्स बुक करे, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट भी एक्सेस कर सकता है। जेक एलन एक स्टार्टअप चलाते हैं जो बिजनेसेस के लिए ओपन क्लॉ नाम का एजेंटिक AI सिस्टम सेटअप करते हैं।
2: And anything it's plugged into, it can do within reason. Like say for instance you're wanting to, it can access a browser. It can, you know, it can book plane tickets for you if you want. Like you can set up a bank account for it, and if you, and then it can access that bank account and use it if you want.
1: OpenClaw एक मुफ्त और customizable agentic AI system है। Anthropic के Claude Code और OpenAI के ChatGPT agent का एक विकल्प। इसे करीब 32 लाख लोग हर महीने इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें host कहा जाता है। जेक बताते हैं कि कार्गो शिपिंग से लेकर फैशन रिटेल तक फाइनेंस ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, कंसल्टिंग, रियल एस्टेट और टूरिज्म, हर इंडस्ट्री इसे इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन इस आजादी की कीमत क्या है? AI एथिक्स और गवर्नेंस एक्सपर्ट दिव्या कनगा सिंघम चेतावनी देती हैं।
3: You're not just dealing with data leakage, you're also potentially looking at, you know, like password exposure, your biometrics getting stolen, your data getting stolen. So there are some real risks.
1: और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। एजेंटिक AI इस्तेमाल करने वाले कुछ यूजर्स की शिकायत है कि उनकी निजी जानकारी उनकी इजाजत के बगैर ऑनलाइन डाल दी गई, यानी डॉक्स कर दी गई। और ये काम किया उनके ही AI एजेंट ने। ये सब हुआ मोल्ट बुक नाम के एक प्लेटफॉर्म पर, जिसे रेडिट फॉर AI कहा जा रहा है। ये एक ऐसा सोशल नेटवर्क है जहां AI से बात करता है और इंसान सिर्फ देखते हैं। इन एजेंट्स ने तो अपना एक धर्म तक बना लिया है, क्रस्टाफारियनिज्म नाम का। अब सवाल ये है कि इन सब का भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय पर क्या असर पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत से भारतीय ऑस्ट्रेलियाई काम करते हैं और सबसे बड़ा खतरा यही है। एंथ्रोपिक के रिसर्च टूल क्लायो के मुताबिक मल्टी एजेंट सिस्टम्स, यानी ऐसे AI एजेंट्स की टीम जो मिलकर काम करते हैं, अब सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स के एक स्टडी के मुताबिक सॉफ्टवेयर मार्केट का करीब 30% हिस्सा आने वाले समय में AI एजेंट्स चलाएंगे। इसका सीधा मतलब है हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नौकरियों पर खतरा और एंट्री लेवल पोजीशंस करीब करीब खत्म। ओपन क्लॉ स्टार्टअप चलाने वाली डेनियल राइजनबर्ग एक चौंकाने वाली मिसाल देते हैं।
4: A couple of weeks ago, the main developer on Claude Code posted that 100% of the code for Claude

0: code is now written by Claude Code.
1: यानी AI का कोड अब खुद AI लिख रहा है. ओपन क्लॉक के डेवलपर पीटर स्टाइनबर्गर ने SBS को दिए एक बयान में कहा,
2: सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्थ मच एनीमोर, इट्स नाउ ऑल अबाउट वेलोसिटी, एग्जीक्यूशन एंड कम्युनिटी.
1: यानी पुरानी स्किल्स अब काफी नहीं है. ये बदलाव कितना बड़ा है और भारतीय ऑस्ट्रेलिया नजरिए से इसे कैसे देखा जाए, इस पर जानने के लिए हमने बात की 2024 में यंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत चुके AI विशेषज्ञ आमिर कुतुब से, जो खुद भी ओपन क्लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं. आमिर, बहुत बहुत स्वागत है आपका SBS हिंदी में. आप खुद ओपन क्लॉ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और रोजमर्रा का काम इससे कितना बदला है आपके लिए?
3: जी बिल्कुल, तो मैं ओपन क्लॉ के मैंने बहुत सारे एजेंट्स बनाए हैं जो मैंने अपने बिजनेस में डिप्लॉय करे हैं. तो मार्केटिंग टीम के लिए अपना एक एजेंट है, एक सेल्स टीम के लिए एजेंट है, और ये सारे एजेंट एक COO एजेंट है, उसको रिपोर्ट करते हैं और ये एक कंप्यूटर पे जो है ऑपरेट करते हैं और सारा काम जो है हमारा ऑटोमेट करते हैं. बहुत सारा काम ऐसा है जिसमें अभी भी ह्यूमन लूप में है, लेकिन जो भी मिनिमल बोरिंग काम होता था, जो काम सिंपल डाटा एंट्री का होता था या फिर कंटेंट राइटिंग का होता था, वो सारा काम हम ओपन क्लॉ से कर रहे हैं. इसके साथ ही मैंने एक फैमिली के लिए भी, अपनी वाइफ के लिए मैंने वैलेंटाइंस डे पे एक AI एजेंट बनाया और उसको बोला कि तुम्हारा काम है कि मेरी वाइफ को जो है खुश रखो, हर चीज से पूछते रहो, और ये ओपन क्लॉ उसको जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करता है. तो उसको मैसेज आया कि मैं मीरो हूँ, मैं आपकी सहायक हूँ, असिस्टेंट हूँ, और आमिर ने मुझे आपके लिए बनाया है कि मैं आपका ख्याल रख सकूँ. मैंने पूछा कि मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो मेरी वाइफ ने बहुत सारी चीजें बताई, उनमें से एक बोला कि हमारी जो वैनिटी है बहुत दिनों से ब्रोकन है और मैं आमिर से बोल रही हूँ इसे फिक्स करवाएं, लेकिन ये फिक्स नहीं हुई है. तो उस एजेंट ने क्या किया कि वो एयर टास्कर पर गया, उसने जॉब पोस्ट करी और फिर उसके बाद प्लमर्स ने अप्लाई किया. एक प्लमर आया, उसको उसने उसके साथ नेगोशिएट किया. वो करीब $250 मांग रहा था, उसने से नेगोशिएट करके $200 पे लेके आया और उस प्लमर को बुक किया. इस तरीके से हमारी वैनिटी जो है फिक्स हो गई. तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ओपन क्लॉ हमारे घर पे और हमारे बिजनेस में हेल्प कर रहा है.
1: पर आमिर, अगर प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी के नजरिए से देखा जाए तो छोटे बिजनेस ओनर्स को एजेंटिक AI इस्तेमाल करते वक्त कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए?
3: जी, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप टेक्निकल नहीं है तो ओपन क्लॉ जैसी चीजों पे जंप ना करें, क्योंकि बहुत पावरफुल है लेकिन बहुत डेंजरस भी है. एक मेरे जानने वाले ने इसको परचेज किया, उसको क्रेडिट कार्ड भी दिया और फिर उससे एक दिन उसने उसको कुछ काम करने को बोला. तो ओपन क्लॉ को वो काम करना नहीं आता था, तो वो इंटरनेट पे गया, उसने $5,000 का कोर्स खरीद लिया, उसको पढ़ा और फिर वो काम कर दिया, लेकिन उसका $5,000 का जो है नुकसान हो गया. तो ये टेक्नोलॉजीज जो हैं वो काफी ज्यादा जो है वो डेंजरस हैं और इसका हमें ख्याल रखना चाहिए. इस वजह से मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि छोटे बिजनेस जो है वो क्लाउड डेस्कटॉप से स्टार्ट कर सकते हैं. उसमें एक कोवर्क फीचर है, उसमें आप अपने कंप्यूटर पे किसी भी फाइल की एक्सेस को दे सकते हो, ये फोल्डर की, और बोल सकते हो तुम मेरे लिए ये काम करो और वो काम कर सकता है. वो चीज थोड़ी ज्यादा सिक्योर है, प्राइवेट है, रेदर देन समथिंग लाइक ओपन क्लॉ.
1: पॉज AI नाम के एक मूवमेंट के CEO मैक्सिम फोर्निस पहले खुद AI सिस्टम्स बनाने में 12 साल लगा चुके हैं. आज वो उसी तकनीक की रफ्तार रोकने की कोशिश कर रहे हैं.
4: The technology is progressing extremely fast. Like most research shows in AI, I think we are going to have super intelligence in 3 to 5 years, and we're just not ready.
1: Super intelligence, यानी ऐसा AI जो हर cognitive क्षेत्र में इंसान से आगे हो. फोनेस इसी बदलाव की रफ्तार एक अलग तरीके से नापते हैं, ये देखकर कि AI कितने सीनियर लेवल के लोगों की जगह ले रहा है. तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार इस बारे में क्या कर रही है?

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Es badlav ke beech mein hai.
3: We're still very much in the middle of how these technologies are changing how we live, how we work. And it's very hard for us to determine the impact or scale. We know it's going to have both positives and negatives.
2: भारतीय ऑस्ट्रेलियाई परिवारों के लिए इस कहानी में 3 साफ संदेश हैं। पहला, अगर आप आईटी में हैं या बच्चों को इस क्षेत्र में भेज रहे हैं तो सिर्फ कोडिंग स्किल्स अब काफी नहीं है। दूसरा, अगर आप छोटा व्यापार चलाते हैं और एआई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर खास ध्यान दीजिए। तीसरा, ये बदलाव सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं है, भारत में भी आईटी सेक्टर पर इसका असर होगा। फोनेस कहते हैं कि सुपर इंटेलिजेंस शायद अब बहुत दूर नहीं है।
4: Better than the best human in every single domain. So it would be a better mathematician than the best mathematicians. It would be better at coming up with strategies for war, for example. That's a thing that interests a lot of people, like being able better than the best general on a battlefield.
2: Zoe Brock की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए लेकर आई स्वाति शर्मा। धन्यवाद।
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: SBS Hindi हर समय उपलब्ध है। जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS Audio app डाउनलोड करें।
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त हो गया है हमारे शो की आखिरी रिपोर्ट का, जिसके बाद हम आपके लिए कुछ गाने प्ले करेंगे। अपने कार्यबल में विविधता को और मजबूत बनाने के लिए विक्टोरिया पुलिस सक्रिय रूप से CLD समुदायों के लोगों को पुलिस बल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस पॉडकास्ट में विक्टोरिया पुलिस के वरिष्ठ कांस्टेबल एश दीक्षित बहुसांस्कृतिक पुलिस बल के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं और भारतीय समुदाय की प्रमुख चिंताओं एवं मुद्दों पर अपने विचार साझा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं नताशा कॉल की ये रिपोर्ट।
11: नमस्कार, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से और आज हम विक्टोरिया पुलिस के एक ऐसे सदस्य से जुड़ रहे हैं जो पिछले 2 दशकों से पुलिस फोर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय मूल के होने के साथ साथ वे एक मल्टीकल्चरल पुलिस अधिकारी के रूप में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस विशेष बातचीत में हम जानेंगे उनकी शुरुआत कैसे हुई, भारतीय मूल का होना उनके काम में आज क्या मायने रखता है और आज भारतीय समुदाय के सामने सबसे बड़ा मुद्दा

0: क्या है। तो आइए मिलते हैं ऐश दीक्षित से।
1: मेरे ख्याल से मैं यू हूँ वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस हूँ जो इसने विक्टोरिया पुलिस ज्वाइन करी, ऑलमोस्ट 21 साल हो गए। और उस समय तो मेरे ख्याल से तीन चार ही इंडियन थे पुलिस में, विक्टोरिया पुलिस में। और इट वाज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि मैं बचपन से मैं पुलिस ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे वो इसके अगेंस्ट थे। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं, एंड इट वाज डिफिकल्ट थिंग बिकॉज मुझे स्विमिंग करनी भी नहीं आती थी, और पुलिस एग्जाम में यू हैव टू पास द स्विमिंग
0: अच्छा
1: टेस्ट बिसाइड द रनिंग एंड ऑल दोस डिफरेंट हर्डल रेस उस समय हुआ करती है। तो मुझे 10 महीने करीबन लग गए स्विमिंग सीखने में। मैंने अपने आपको 1 साल का वक्त दिया था कि इफ आई कांट डू स्विमिंग देन आई विल हैव टू फाइंड समथिंग एल्स। लेकिन 10 महीने
0: अच्छा
1: में आई वॉज एबल टू पास द स्विमिंग टेस्ट, एवरीथिंग एल्स आई ऑलरेडी पास, द ओनली द स्विमिंग वॉज अ बिग हर्डल फॉर मी टू के मैं उसको सीखूं और पास करूं, बिकॉज
0: जी
1: उसमें लिमिटेड टाइम होता है और यू हैव टू डू ओलंपिक साइज पूल बैक एंड
0: अच्छा
1: फोर्थ।
0: तो टोटल कितने टेस्ट आपको क्लियर करने पड़ते हैं पुलिस के लिए?
1: उस समय तो रिटन टेस्ट होता था, उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट होता था, और आपको ऑब्वियसली फिजिकल टेस्ट
0: जी
1: होता था जो कि एक हर्डल रेस होती थी जिसमें जंपिंग वगैरह भी इंक्लूडेड था जो अब नहीं होता है, और स्विमिंग टेस्ट हुआ करता था।
0: अच्छा
1: उसके बाद आपको जब आप सब पास कर लें देन यू हैव टू डू अ पैनल इंटरव्यू जिसमें तीन बोर्ड पैनल मेंबर्स होते थे जिनमें आपको
0: जी
1: डील करना पड़ता था। तो इट वाज वेरी डिफरेंट एंड आई वुड से
0: अब क्या
1: इट
0: तरीका
1: अब तो
0: है?
1: आसान है अब तो
0: अच्छा
1: कंपैरिजन में
0: अच्छा
1: क्योंकि फिजिकल टेस्ट भी थोड़ा आसान है
0: अच्छा
1: और पैनल जो होता है वो भी दो ही लोगों का होता है, अब तीन लोगों
0: अच्छा
1: का नहीं होता। तो
0: और रिटन टेस्ट और वो जो बाकी आप बता रहे हैं स्विमिंग, क्या वो भी इस
1: स्विमिंग तो होती है, पीएसओ में नहीं होती है, बट पुलिस इफ यू वांट अगर आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको स्विमिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा।
0: जी
1: पीएसओ या कस्टडी ऑफिसर के लिए स्विमिंग टेस्ट की जरूरत नहीं होती है।
0: जी ऐश, आपने करीब 20 साल पहले पुलिस बल में कदम रखा था, तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया, खासतौर पर विक्टोरिया की डाइवर्सिटी को अगर हम देखें। आज भारतीय मूल की आबादी यहाँ तेजी से बढ़ रही है, ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रवासी समुदाय में से एक है। भारतीय समुदाय की एक अपनी अलग पहचान है आज विक्टोरिया में। ऐसे में पुलिस बल में आप जैसे लोगों की मौजूदगी कितनी अहम है? आप अपनी भूमिका को किस प्रकार देखते हैं?
1: देखिए मुझे याद है कि जब मैं पेट्रोलिंग करता था उस समय, और मैं जो था सिटी ऑफिस में भी मैं 3-4 साल वहाँ काम किए मैंने, तो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस क्योंकि जब आप पुलिस वैन से निकलते हैं तो पीपल एट दैट टाइम देवर नॉट मैनी इंडियंस इन मेलबर्न एंड ऑलमोस्ट हैंडफुल ऑफ इंडियंस इन द पुलिस फोर्स।
0: जी
1: सो People looked at me surprised in a surprising way that when I
0: अच्छा
1: used to come of the
0: अच्छा
1: police van। और मैंने एक बात और भी नोट करी थी कि जब कोई एथनिक कम्युनिटी का जो मेंबर होता था, मेल फीमेल एशियन इंडियन, सो दे वांटेड टू टॉक टू मी फर्स्ट
0: जी
1: बिकॉज इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू माय कॉलीग,
0: जी
1: क्योंकि उनको ये लगता था कि दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड मी मोर,
0: जी
1: सो दैट आई थिंक सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपुल फ्रॉम वेरियस कल्चर्स ज्वाइनिंग द पुलिस, बिकॉज
0: जी
1: देन देयर कम्युनिटी मेंबर्स फील मोर कंफर्टेबल, दे थिंक दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड मी इन अ बिट बेटर वे।
0: जी अच्छा, आपको तो इतने वर्षों का अनुभव है, ये बताइए कि जब आप भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करते हैं तो क्या समुदाय में पुलिस को लेकर कुछ आम गलत फहमियां हैं?
1: देखिए वो इंडियन कम्युनिटी में तो जब मैं नया आया था तब भी मिसकंसेप्शन था, वो वाला मिसकंसेप्शन अभी भी है क्योंकि जो इंडिया से आते हैं दे आर बॉर्न इन इंडिया दे हैव लिव देयर फॉर सम टाइम इन देयर लाइफ, तो इंडियन पुलिस की रेपुटेशन तो उतनी अच्छी है नहीं अनफॉर्चुनेटली, एंड दे आर स्केयर्ड टू

0: अप्रोच पुलिस इन इंडिया. सो वो जब वहां से आते हैं तो वो वही सोच के आते हैं कि यहाँ की पुलिस भी ऐसी ही होगी, एंड दे हैव द फियर ऑफ द
1: जी
0: पुलिस टू कम एंड टॉक. चाहे वो विक्टिम हो क्राइम के, तो भी उनको लगता है कि भाई शुड आई कॉन्टेक्ट द पुलिस और जस्ट लीव इट, क्योंकि इंडिया में तो पुलिस के दे आर टू स्केयर्ड ऑफ द पुलिस. क्योंकि यहाँ आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, यहाँ पर एक जो यूनिवर्सिटी में काम करने वाले थे लेक्चरर कुछ साल पहले, तो वो मुझसे मिलने आए. जनरल उनको बात करनी थी, नथिंग स्पेसिफिक, कोई क्राइम वाली बात भी नहीं थी, बट ही वॉज स्केयर्ड टू कम इनसाइड द पुलिस स्टेशन. तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि मैं आ गया हूँ लेकिन मैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, तो कैन यू कम एंड टॉक टू मी. सो दैट इज द पर्सन हु इज अ लेक्चरर इन अ यूनिवर्सिटी, एंड दैट्स हाउ ही वॉज अनकंफर्टेबल इवन अटेंडिंग द पुलिस स्टेशन टॉकिंग टू मी, एंड ही वॉज नॉट अ विक्टिम और ही वॉज नॉट रिपोर्टिंग एनी क्राइम, बट दैट इज हिज परसेप्शन.
1: जी ऐश, आज भारतीय समुदाय के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है?
0: अनफॉर्चुनेटली फैमिली वायलेंस तो सबसे बड़ा मुद्दा
1: जी
0: है
1: जी
0: हमारी, वो कई कम्युनिटी में भी है, इंडियन कम्युनिटी में भी है काफी.
1: जी जी
0: और वी कैन बिकॉज उसमें ये भी होता है ना, क्योंकि व्हेन अ गर्ल कम्स फ्रॉम इन अ डिफरेंट कंट्री एंड उसकी अगर इंग्लिश में भी उसको उसका हाथ तंग है, तो उसको थोड़ी और उसका कोई कनेक्शन भी नहीं है बिना हस्बैंड के अलावा, तो और उसको ये भी नहीं पता कि यहाँ पर हेल्प की और कोई एवेन्यूज हैं कि नहीं है, तो शी फील्स हेल्पलेस, शी डजंट नो व्हाट टू डू. बिकॉज इन
1: जी
0: सम कंट्रीज द ओनली ऑप्शन इफ यू आर विक्टिम फैमिली वायलेंस है कि पुलिस, बट यहाँ पर और भी संस्थाएं हैं जो आपकी सोशल वर्कर्स हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं, और अगर
1: जी
0: उनको लगता है कि आपकी समस्या बड़ी है और पुलिस की रिपोर्टिंग जरूरी है, तो दे विल कॉन्टेक्ट द पुलिस ऑन देयर बिहाफ. बट मेन मेन थिंग ये है कि आप अगर आप फैमिली वायलेंस के विक्टिम हैं या आप जानते हैं किसी को, तो उनको एनकरेज करें कि आप पुलिस या किसी और की मदद जरूर लें. जैसे ऑरेंज डोर है, वो काफी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन टच है, तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन दे विल हेल्प और गाइड यू एटलीस्ट कि क्या करें, क्योंकि अगर आप सहते रहेंगे तो इट विल जस्ट इंक्रीज, एंड वी डोंट वांट द विक्टिम ऑफ फैमिली वायलेंस इन द हॉस्पिटल, वी वांट टू स्टॉप दैट. तो
1: जी
0: ये हम लोग पूरी कोशिश, यही हमारा मैसेज है लोगों के लिए, बट ये
1: बहुत बहुत धन्यवाद आश जी हमसे जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू नताशा जी.
2: SBS हिंदी पर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो सवाल हमने पूछा था वो ये था कि आपने थिएटर हॉल में पहली मूवी कौन सी देखी है, और कई मैसेजेस आए हैं। सुरेंद्र चावला जी ने मैसेज किया है कि हमने मीना कुमारी की चिराग कहाँ रोशनी कहाँ ये फिल्म देखी थी, और हेमलता पुरोहित जी लिखती हैं कि स्कूल टाइम पे उन्होंने कटी पतंग जो मूवी आई थी वो देखी थी, और एक और मैसेज आया है राजेंद्र वोरा जी का, वो लिखते हैं कि मैंने मुजफ्फर बिहार में चित्रा नाम का एक हॉल था वहां पे मैंने बरसात मूवी देखी थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप सबने अपने मैसेजेस भेजे। 04397997667 हमारा नंबर है, अगर आप अपनी पहली मूवी बताना चाहते हैं जो आपने हॉल में देखी तो मैसेज कर दीजिए। कुछ मिनटों का शो बचा है, हम उसे जरूर पढ़ेंगे, और इस वक्त समय हो गया है गाना सुनने का, और फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी और फिर लेंगे अलविदा इस शो से। एंजॉय करिए ये गाना।

SBS हिंदी पर आज मेरे साथ शो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी गाने के साथ आपसे अलविदा लूंगा और दो आखिरी मैसेजेस पढ़ लेते हैं। क्लाइड सेव राजेश जी लिखते हैं कि मैंने बचपन में हम आपके हैं कौन देखी थी जो मुझे याद है, और एक और मैसेज आया है जिसमें विद्या जी लिखती हैं कि माधुरी दीक्षित और सलमान खान की हमने मूवी देखी थी थिएटर में, फिल्म साजन। तो ये दो मैसेजेस आए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बने रहने के लिए। आप SBS हिंदी पर ये आखिरी गाना एंजॉय करिए। मैं आपसे मिलूंगा एक बार फिर कल एक नए शो में, और फिर ढेर सारी बातें, ढेर सारे रिपोर्ट्स और कुछ गाने होंगे। अपनी शाम को खूबसूरत बनाइए और सुनते रहिए SBS हिंदी।

0: डंड लाई जाओ, बैठका मारी जाओ, दौड़ लाई जाओ, स्प्रिंट करी जाओ, पुशअप कर लो, बहुत बहुत सारा समान भी लग्या पार्कों के। इस काम दौरान भी मैं पहला मेरा जो काम सीगा काफ़ी फेरा तुरे का मौका होंदा सीगा, तो मैं हर वे कोशिश करता सीगा भी जिथे कंपनी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती भी है भावें जो थोड़ा जहा फासला आए तो तुर के चले जाओ, तुर के ही आ जाओ। इतने तो बहुत सुधार जी मौके ने, तो अपनी इच्छा शक्ति तो है, तुम जिनी मर्जी वर्जिश से अपने शरीर का ख्याल रख सकते इतने।
1: हाँ जी, जिवें तुसीं कहा कि नैचुरल तरीके दे नाल भी आपां सेहत नूं तंदुरुस्त रख सकते हैं, जिथे कि वॉक करके जाया जा सकता उत्थे तो वॉक करके ही जाना चाहिए जी।
0: पर मैनूं तां बहुत वधिया लगता है वॉक करना, तुरना जां दौड़ना, क्योंकि एक मिनिमलिस्ट बंदा भी कर सकता है, क्योंकि कुछ भी नहीं करना, तुसीं पैरां च बूट पाउणे ते तुर जाणा, ना तुहानूं साथ चाहिए, ना तुहानूं समान चाहिए, ना तुहानूं कुछ नहीं चाहिए, तो जिधर मर्जी तुर जाओ, जिधर मर्जी दौड़ ला लो
1: जी,
0: बहुत वधिया माहौल है।
1: ते जे तुसीं किसी ग्रुप के जाते हो वॉक करते हो, भावें परिवार ही होठा नाल वॉक कर रहा हो, एक जो संवाद हों भी शुरू हो जाता है, गलबात भी शुरू हो जाती है। कई बार घर च नहीं टाइम मिलता तो बाहर जाके गलबात भी हो जाती है। तुम दसा कि तुम सारे कट्ठे ही रह रहे हो, तो थोड़े जेडे पिता जी है तो थोड़े जो बेटे है उन बॉन्ड किमें?
0: हाँ जी, ये बड़ी कृपा है जी, क्योंकि साढ़े बच्चे मेरा बेटा भी 2007 जी पैदा होया, 2007 जी साढ़े माता पिता इतने आ गए थे, तो ये पंजे बच्चे साढ़े दो तीन मेरे तो दो मेरे छोटे भरा दे, पंजे बच्चे साढ़े माता पिता ने ही पाले है, तो उन्होंने तो बहुत सोहना बॉन्ड है। वो तो उन्होंने तो कोई परवाह नहीं होंगी कि अभी पेरेंट्स उन्होंने घर हो चाहे ना हो, एक तो आपस उन्होंने ग्रुप है पंजा जाने का, दूजा साढ़े माता पिता हमेशा घर ही होंगे है, सानू तो बहुत कृपा ही है जी, कह सकते हैं आप कोई बंदे की अपनी तो कोई इन्नी हमी नहीं है, अकलमंदी कृपा वाली गल ही।